यानी फीफा वर्ल्ड कप जो कि यूएसए मेक्सिको और कनाडा में खेला जा रहा है में कल दो शानदार मैच खेले गए। पहला मैच 5 बार विश्व विजेता ब्राजील और नॉर्वे के बीच खेला गया। नॉर्वे ने शानदार फुटबॉल खेलते हुए ब्राजील को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 से बाहर कर दिया। अर्लिंग हालैंड ने 79 और 90th मिनट में गोल मारकर नॉर्वे को 2-0 की बढ़त दिलाई थी। ब्राजील को 100th मिनट में पेनल्टी मिली जिसको नेमार ने खूबसूरती से गोल मारकर मैच 2-1 पर ले आए, परंतु समय नहीं बचा और नॉर्वे ने ये मैच अपने नाम कर लिया। फर्स्ट हाफ में ब्राजील को एक और पेनल्टी मिली थी लेकिन ब्रूनो गिमराइज गोल नहीं कर पाए। इस जीत के साथ नॉर्वे अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में नॉर्वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा है और नॉर्वे के लिए ये बहुत गर्व की बात है। जहां तक ब्राजील की बात करें तो काफी निराशाजनक प्रदर्शन रहा और 1990 के बाद ये पहली बार है जब ब्राजील फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाया। इस हार के साथ ब्राजील का नॉर्वे के अगेंस्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड और खराब हुआ। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि नॉर्वे ऐसा अकेला देश है जिसके साथ ब्राजील कई बार खेला है लेकिन हरा नहीं पाया है। ब्राजील नॉर्वे से आज तक 5 मैच खेला है जिसमें से उन्होंने 2 मैच हार गए हैं और 3 बार मैच ड्रॉ रहा है।